0: Chairman Bharti Enterprises, Noel Naval Tata, Chairman Tata Trusts, UK Sinha, former Chairman SEBI, Kiran Mazumdar Shaw, Chairperson Biocon Group, C.S. Setty, Chairperson SBI, Jayant Sinha, former Union Minister of Finance and Civil Aviation, Ramesh Damani, Value Investor and Member of BSE, Cyril Shroff, Managing Partner, Cyril Amarchand Mangaldas, NDTV Profit, Business Leadership Awards, Honoring Excellence, coming soon.
1: Bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
2: Illegal migrant, ye Bangladesh se ghuspitiya ke liye ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
3: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन व्हिच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
4: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
5: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
6: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक the confidence of industry.
7: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left the Democratic Front.
8: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: All right, just in.

0: state would actually remain outside the purview of this proposed UCC legislation?
1: Absolutely. So in Assam, you have several areas where you have the tribal councils, like the Bodoland Territorial Council. So those areas under the Bodoland Territorial Council or the Karbi Anglong Autonomous Council or the Dimahasa Autonomous Council, these are tribal areas, these are which are under Sixth Schedule, where you have certain customary laws which are allowed. So those areas, the tribal communities will be, those Sixth Schedule areas would be kept outside the ambit of the UCC, and all the tribal communities of the state, all the registered tribal communities of the state would be outside the ambit of the UCC. That's the decision that the cabinet has taken, and therefore Assam's UCC would be a little different to what we have seen in states which have already implemented UCC.
0: As always, Ratnadeep, thank you so much for joining us with the latest details and contextualizing the developments for us. All right, let's switch tracks now. What really killed Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav's half-brother, Prateek Yadav, who was just 38 when he passed away yesterday morning? Well, NDTV has accessed his autopsy report, which has revealed that he died due to a massive blockage in the blood vessels of the lungs, leading to a collapse of the heart and respiratory system. That report lists six injuries, all before the death. These injuries were reported in the chest, arms, elbow, left wrist. You must note, while three of the injuries are about 5 to 7 days old, three others are about a day old. The autopsy report further stated that doctors preserved the entire heart and clot-like material recovered from the lungs for detailed examination, and the sample has now been preserved for chemical analysis. All right, on that note, let's turn our attention to breaking updates that are now coming in. We have shocking, unfortunate news coming in from New Delhi this morning. A deeply disturbing case from the national capital, and one that is certain to trigger fresh political scrutiny over women's safety. Police have registered a gang rape case in Nangloi after a woman alleged that she was sexually assaulted inside a parked bus by two men. As per investigators, the incident took place 2 days ago, and the accused, identified as the bus driver and conductor, have now been arrested. This investigation is currently underway. A case of gang rape has been registered in Nangloi in Delhi after a woman reported that two men gang raped her inside a parked bus. Police have arrested both accused, and the incident happened 2 days ago. The driver and the conductor have been arrested, we're told. Police are now examining forensic evidence, CCTV footage, and crucially, the sequence of events leading up to this crime. Politically, this case is also significant because it comes at a time when the BJP is in power in Delhi, and questions around law and order and women's safety are likely to intensify sharply. But this alleged assault inside a parked bus, it inevitably revives painful memories for the capital, where public transport-related crimes against women have sparked national outrage in the past as well. A deeply disturbing case that we're tracking from the national capital this morning, one that is certain to trigger fresh political scrutiny as well, crucially over women's safety in New Delhi. Police have registered a gang rape case in Nangloi after a woman has alleged that she was sexually assaulted inside a parked bus by two men. According to investigators, this incident took place just 2 days ago, and the accused, identified as the bus driver and conductor, have now been arrested. We've got Kuldeep Kumar from the Aam Aadmi Party joining us for a quick reaction at this point. Mr. Kumar, deeply disturbing details are currently emerging, and as investigators figure out all the finer details, including the sequences leading up to this absolute crime. But the BJP is now in power, considering the emphasis that they lay on women's safety, on law and order. What do you have to say about the state of affairs in Delhi this morning?
2: देखिए ये बहुत दिल दहलाने वाली घटना है कि चलती बस के अंदर महिला के साथ गैंगरेप होता है लड़की के साथ, और हम लगातार ये बात उठा रहे हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। दिल्ली के अंदर अभी कुछ दिन पहले 30 तारीख को इस बच्ची के साथ, 3 साल की बच्ची के साथ स्कूल के अंदर बलात्कार हुआ, रेप हुआ, और पुलिस ने उसके लोग उनके परिवार को धमकाया, आरोपी को 7 दिन में बेल मिल गई। आप सोचो क्या ऐसे हम किस और जा रहे हैं, क्या इससे अपराधियों की जो मनोबल है वो बढ़ नहीं रहा है। आज दिल्ली में भाजपा की सरकार 4 इंजन की, लेकिन आप देखो कि दिल्ली में लगातार कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो गई है, और आज उसका नतीजा है कि वो एक महिला के साथ इस तरह का गैंगरेप हुआ है, क्योंकि आज अपराधियों के जो हौसले बुलंद है, क्योंकि उनको भाजपा की सरकार, भाजपा के द्वारा संरक्षण प्राप्त हो रहा है, उनको पता है कि उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इसलिए इस तरह घटनाएं हो रही है। लेकिन ये बहुत दुखद घटना है दिल्ली के अंदर है, और हमारी बेटियों की, हमाररी बहनों की, दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा दांव पे लगी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को दबाने में बैठी हुई है।
0: ऑलराइट, एट दिस पॉइंट मिस्टर कुमार, व्हाट इज द आम आदमी पार्टी करंटली डिमांडिंग इन दिस सिचुएशन?
2: हम तो लगातार एक ही डिमांड कर रहे हैं। कल रात हम एलजी हाउस में बैठे हुए थे, दिल्ली के पुलिस के मुख्य एलजी साहब हैं, बीजेपी की सरकार है, हम वहां 5-6 घंटे तक हमारे विधायक पार्षद बैठे रहे, एलजी साहब से मिलने के लिए, एलजी साहब से नहीं मिले। हम उनसे बात करना चाहते हैं, आप मिलिए हमसे। दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी खराब हो चुकी है, हमारी बहन बेटी सुरक्षा दांव पे लगी हुई है, उसी का नतीजा देखने के लिए मिल रहा है कि कैसे दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप हुआ है, जैसे निर्भया का कांड दिल्ली के अंदर हुआ, आज उसी तरफ दिल्ली को लेके जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो तुरंत प्रभाव में दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली की कानून व्यवस्था को अपना इस्तीफा देना चाहिए। ये सरकार नहीं चला पा रही, सरकार पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है।
0: मिस्टर कुमार, As you know, Delhi has witnessed repeated national outrage over crimes against women across multiple governments. I do understand that you are requesting, you are actually making the appeal that the current government and the chief minister should step down. As a former ruling party in the capital, I want to know, do you believe enough is being done structurally to improve safety in public spaces as far as New Delhi is concerned under the BJP?
2: देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, और देश की राजधानी में आपसे पहले डिफरेंट गवर्नमेंट रही है, लेकिन पहली बार ऐसा है कि एक ही पार्टी के पास सारी गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर है, चाहे वो बीजेपी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे म्युनिसिपल गवर्नमेंट हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, एक ही गवर्नमेंट के अंदर है। लेकिन वो जो काम उनको करना चाहिए वो काम उन लोगों ने नहीं किया, ना ही उनका लॉ एंड ऑर्डर पर काम वो लोग कर रहे हैं, ना ही वुमेन सेफ्टी पे काम कर रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए, दिल्ली कौन से स्थान पर, उसको दिखेगी आपको। हम लगातार कह रहे हैं, पिछले अगर आप एक मैं 10 दिन की घटना की बात कर लूं, तो दिल्ली में मल्टीपल हत्याएं, रेप, बलात्कार हो चुके हैं, और सरकार जो है वो चुप बैठी हुई है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था भगवान के भरोसे है।
0: ऑलराइट मिस्टर कुलदीप कुमार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन बिहाफ ऑफ द आम आदमी पार्टी। वी आर ऑफ कोर्स वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द बीजेपी एज वेल। Police have registered a gang rape case in Delhi's Nangloi after a woman alleged that she was sexually assaulted inside a parked bus by 2 men. We are of course waiting for further clarity on what exactly happened. Investigators are currently investigating the matter, but this incident took place 2 days ago and the accused, identified as a bus driver and conductor, have now been arrested. We continue to track all the finer details for you and ask the tough questions. For now, slipping into a quick break, back in a moment.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Higher end, check the audio. Higher end, check the audio.
6: Let's do it. Let's do it. Let's start.
7: Big news that we're breaking first here on NDTV.
8: We know for sure that they have, you know, confirmed their support to him.
7: We've got a picture of the letter.
9: The breaking story. We're jumping straight into it.
10: They do not want to be part of an experiment.
11: Show around and then come to me
12: at the Nehru Stadium in Chennai.
13: Unconditional support.
8: Crime killer of TVK is here with us.
14: We've got Mr. Dinakaran with us here.
15: Veera, why aren't you also dancing?
8: Vijay is coming out, TVK chief.
7: Big breaking story here on NDTV. Nobody else has these details. Thank you for all the support. Thank you for the viewership. Thank you for the love.
16: Meetha. या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
17: इकोनॉमी बिजनेस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी नॉइज फिल्टर्ड नंबर्स डिकोडेड इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ वी कनेक्ट द डॉट्स योर डेली एज योर ग्लोबल एडवांटेज। India Business Report with me, Gauri Dwivedi, weeknights on NDTV Profit.
18: Launch control, 0 to 100.
19: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
20: This car makes no sense, yet it makes every sense.
21: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
19: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
16: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
22: Mahasachiv Shri Mukul Vasnik Ji and AICC Mahasachiv, jo Keralam ki zimmedari hai. दीपा दास मुंशी जी हैं। अभी श्रीमती दीपा दास मुंशी जी एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगी। दीपा जी ये सिर्फ घोषणा करेंगे, उसके बाद सवाल जवाब नहीं होगा। इनफॉर्मली हम बातचीत करेंगे, पर अभी घोषणा करने दीजिए क्योंकि इसका आपका इंतजार भी है।
23: नमस्कार। द कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी हैड मेड इन तिरुवंतपुरम ऑन May 7, 2026 एंड हैड यूनानिमसली रिजॉल्व टू ऑथराइज द कांग्रेस प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द न्यू लीडर ऑफ द CLP इन द स्टेट ऑफ केरलम। अकॉर्डिंगली द कांग्रेस प्रेसिडेंट has held extensive discussions with the chairperson of the Congress Parliamentary Party, leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the new

0: and member of BSE. Cyril Shroff, Managing Partner, Cyril Amarchand Mangaldas. NDTV Profit, Business Leadership Awards. Honoring Excellence, coming soon.
1: महासचिव श्री मुकुल वासनिक जी और AICC महासचिव जो केरलम की जिम्मेदारी है दीपा दास मुंशी जी हैं, अभी श्रीमती दीपा दास मुंशी जी एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगी। दीपा जी।

0: Kerala Chief Minister Designate now. He has been appointed the CLP leader unanimously, but unanimously is a word that we don't want to use because we know it's not unanimous yet. There are still discussions taking place. TM Veera Raghav is with us live for a quick first reaction. Veera, as NDTV reported, VD Satheeshan is the new Chief Minister of Kerala.
1: Absolutely. I think this is pretty much keeping in tandem with the public sentiment and also the fact that if KC Venugopal was going to be made Chief Minister, he would have to resign his Lok Sabha seat and he would also have to have somebody having to resign their assembly seat for him to contest. And I believe that the thinking on the top leadership was that they did not want to have by-elections at this stage. I think this is a categorical decision by the High Command to avoid a Karnataka-like situation in Kerala. VD Satheeshan, one of the...
2: Welcome back to Nationwide at 6. Shifting focus to Uttar Pradesh, what really killed Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav's half-brother Prateek Yadav, who was just 38 when he passed away on Wednesday morning? NDTV now has accessed his autopsy report, which has revealed that he died due to a massive blockage in the blood vessels of the lungs, leading to a collapse of the heart and the respiratory system. That's the latest that we are picking up on this entire autopsy report. In fact, let's take you through this entire autopsy report and what really killed Prateek Yadav. The autopsy report states that the death was due to the cardiorespiratory heart-lungs collapse. That is what the autopsy report is stating. There's no foul play that ruled out, but there's no foul play that has been stated as well. The cardiac arrest due to blood clots in the lungs. That's what we are being told. And taking you further on the autopsy report, it says that 6 antemortem before death injuries have been found. Now, there are injuries, but there's no foul play till yet. Investigation perhaps will be taken forward. Injury is 1-3 chest under right arm and right forearm. That's what this autopsy report is stating. It says injury 4-6 is right elbow joint over the elbow and the left wrist. Apart from that, it says there is swelling observed in the legs and 3 injuries about 5-7 days old. This is the latest on the autopsy report of Prateek Yadav. 3 other injuries about 1 day old as well. Now the question really arises that if there have been injuries, is there a foul play? Was there some kind of a confrontation? Because there's a lot of mystery that is surrounding this death. Pallav Mishra, NDTV's correspondent, joins us from Lucknow. Pallav, aap hame bataein ki abhi jo autopsy report aayi hai, ab Uttar Pradesh ki jo police hai, kya isko sangyan mein lete hue ek investigation jari karegi? Uttar Pradesh ki police ab isko lekar kya keh rahi hai?
3: देखिए, जब से प्रतीक यादव की आदित्य मौत हुई है उसके बाद से कई तरह के सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, खासकर इस वजह से हो रहे हैं कि आखिर क्या उनकी मौत जिस संदिग्ध परिस्थिति में हुई है, क्या वही कारण है या फिर वो कारण है जिसको लेकर तमाम जो उनके करीबी लोग हैं जिस पर सवाल उठा रहे हैं। उस जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो मौत का कारण है वो कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स है, यानी उसमें मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हुआ, इसकी वजह से जो दिल की धड़कन थी, जो सफोकेशन था वो महसूस हुआ, दिल की जो धड़कन थी वो काम करना बंद कर दी, और क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है पूरे बॉडी में नहीं हो पा रही थी इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई। लेकिन जब से उनकी मौत हुई है तो उनकी मौत को लेकर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इतने फिट, इतने फिजिक वाला व्यक्ति जो लगातार जिम करता है, जो लगातार अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहता है, उसकी मौत जो उनकी जो मौत है वो ऐसे नहीं हो सकती है। तो इसी को लेकर जो है बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सरकार से जब आज सवाल किया गया ब्रजेश पाठक से तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन हाँ, जो उनकी बॉडी का विसरा है उसको सुरक्षित रखा गया है और उसको पुलिस को सौंपा गया है ताकि आगे की जांच हो सके। इसके अलावा जो हर्ट है और जो पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की सामग्री है उसका जो है हिस्टोलॉजिकल केमिकल जो है टेस्ट किया जाएगा और विसरा को केमिकल एनालिसिस के लिए पुलिस को सौंपा गया है। तो ये एक चीज़ है जिसको लेकर जो है आगे की जांच के बारे में कहा जा रहा है। साथ ही ये है कि उनकी मौत को लेकर कई जो सपा के नेता उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। कल अखिलेश यादव ने इस पर कहा कि जो
2: जी चलिए पल्लव मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अहम देने के लिए। एक बहुत बड़ी रहस्यमय मौत है, मेनी क्वेश्चंस हैव बीन रेज सर्टनली, बट विल देयर बी एन इन्वेस्टिगेशन बाय द यूपी पुलिस, वी विल बी कीपिंग अ टॉप फोकस ऑन दैट। बट न्यूज एंड बुलेटिन कंटिन्यू, दैट्स ऑल फ्रॉम मी ऑन नेशनवाइड एट 6। कीप वॉचिंग एनडीटीवी।

0: be focusing so much on Rahul Gandhi's foreign trips? And if there is indeed a violation of law, why is that not being taken up formally, whether through an audit, if there is a financial discrepancy, or any other aspects that need to be investigated? Why talk? Why no probe? That's the big question. But first up, listen into the relevant sound bites.
1: 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए, तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है. जो विदेश यात्रा रही, द ट्रिप्स आर पब्लिक, ये पब्लिक ट्रिप्स है, बट फंडिंग ट्रायल इज नॉट पब्लिक. 2014-15 में कुल आय 86 लाख रुपीस का, बाहर जाने में खर्चा 4.5 करोड़ का एक सिंगल ट्रिप में. 2017-18 में पूरा इनकम उनका है 1.20 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख रुपए, और खर्चा हुआ है बाहर जाने में 6 करोड़ रुपए, 5 गुना अधिक. 19-20 में उन्होंने आय किया है 1 करोड़ 39 लाख रुपए 1.29 करोड़ रुपीस, और खर्चा किया है बाहर जाने में 4.6 करोड़, 3.5 टाइम्स ज्यादा. सीआरपीएफ ने लेटर लिखा है और उस लेटर में लिखा है कि सीक्रेट ट्रिप. सीक्रेट ट्रिप, व्हाट इज अ सीक्रेट ट्रिप? आप एमपी हैं,

0: India behind you also dancing.
1: Vijay is coming out, TVKG.
0: Big breaking story here on NDTV. Nobody else has these details. Thank you for all the support. Thank you for the viewership. Thank you for the love.
2: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.
3: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: Excellence measured by those who built it. Presenting the jury of the NDTV Profit Business Leadership Awards. Sunil Bharti Mittal, Chairman of the Jury. Founder and Chairman, Bharti Enterprises. Noel Naval Tata, Chairman, Tata Trusts. UK Sinha, former Chairman, SEBI. Kiran Mazumdar Shaw, Chairperson, Biocon Group. C.S. Setty, Chairperson, SBI. Jayant Sinha, former Union Minister of Finance and Civil Aviation. Ramesh Damani, Value Investor and Member of BSE. Cyril Shroff, Managing Partner, Cyril Amarchand Mangaldas. NDTV Profit Business Leadership Awards. Honoring Excellence. Coming soon.
2: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे.
3: वेयर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीट्स द गिफ्टेड कंटेंट राइटर टू क्रिएट द बिग ड्रीम द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी.
5: सचिव श्री मुकुल वासनिक जी और AICC महासचिव जो केरलम की जिम्मेदारी है दीपा दास मुंशी जी हैं. अभी श्रीमती दीपा दास मुंशी जी एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगी. दीपा जी. ये सिर्फ घोषणा करेंगे, उसके बाद सवाल जवाब नहीं होगा. इनफॉर्मली हम बातचीत करेंगे, पर अभी घोषणा करने दीजिए क्योंकि इसका आपका इंतजार भी.